सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार ना होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार।

मां दे होनहार रखवाले पुत्र जो अपने आप नू नशियां विच बर्बाद कर रहे ने, उन्हां नू चलमन सिंह टंडे दी कलम मिस पूजा दी जवानी कुछ इउं कह रही है।

0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अपने ग्रह विखे प्रभात फेरी सदन वास्ते नाम दर्ज कराओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सत श्री अकाल जी बाबा जी साडा भी नाल लिखो।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
4: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
5: We're not having that, are we?
4: No. Oi, hear that? It's water and cans.
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
8: Because when we work together,
9: it all adds up.
10: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

एक शेर तुहाड़ी नजर करदा हजूर। अज दी रात दी खबर दसा, अज दी रात दी खबर दसा, ख्वाब विच सोने आए हुए सन, बड़ी अदा नाल दिता जनाब बोसा, मस्ती विच अज खूब छाए हुए सन, दुख सुख दियां गल्लां खूब होइयां, बड़े अरसे दे दिल घबराए हुए सन, तको तकी अफजल अख खुल गई, जाम कौसर दे लबा नाल

0: नफ्सेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043। क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निका, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 012-774-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम स्टेरियो पर और 100.6 एफएम पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है। अगर आप डेप पे सुनना चाहे तो आप हमें ब्रेडफोर्ड कीतले इल्कली लीड्स हैलिफैक्स स्किप्टन मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नले डार्विन नेल्सन अक्रिंगटन मिल्टन कीन्स आप सुन सकते हैं और बहुत जल्द यानी कि 2nd of September आप हमें लंदन में भी सुन सकेंगे और कुछ दिनों के बाद ही आप डाबी शहर में भी सुन सकेंगे। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं और अगर आप वेबसाइट पर सुनना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं www.sunriseradio.fm पर। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का जिन्होंने पिछले 2 घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक जनाब 2 बजे तक। मिले जुले गीत होंगे आपकी डेडिकेशन होगी तो चलते हैं प्रोग्राम को शुरू करते हैं एक मस्ती भरे गीत के साथ आप सभी दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलिए एंजॉय कीजिएगा हिट ऑफ द आवर की शक्ल में पेश किया गया गीत आप सभी सुनने वालों के नाम।
1: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 0-1274-056-014.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और दोस्तों इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है, इस वक्त टाइम हुआ है 11:16, यानी कि 11:16। तो चलते हैं दोस्तों कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत मेरी जानिब से आप तमाम सुनने वालों के नाम।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735 043.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब एक और मस्ती भरा गीत आ रहा है जनाब, आप दोस्तों के लिए पेश कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सभी एंजॉय करेंगे। हीरा खान साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब आप की जन्म से आपके दोस्तों के नाम, और ग़ुलाम भाई आप की जन्म से आपके स्टाफ के नाम, निवीद भाई आपके नाम भी, और दीगर तमाम दोस्तों के नाम। तो चलते हैं, सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण को।

जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और रुद्र नारायण की आवाजों में मस्ती भरा गीत सुना। यकीन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। नदीम मंसूर साहब, फोन करने का बहुत शुक्रिया जनाब। आपके नाम गीत करेंगे थोड़ी देर के बाद, अब क्योंकि कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे इवेंट्स डायरी, और उसके बाद जनाब आप सुनेंगे गीत, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: जी दोस्तों, अभी आपने ये गीत सुना आज की फिल्म से लिया हुआ कुमार सानू की मत भरी आवाज़ में। कमर्शियल जब हम कमर्शियल पे गए तो जनाब मेरा गाना सेट किया हुआ था कोई और, तो फिर क्या हुआ कि ये नदीम मंसूर साहब का फ़ोन आ गया और उन्होंने इस गीत की फरमाइश की, तो मैंने जो गाना प्ले करना था वो रोक दिया और नदीम मंसूर की पसंद पे ये आज की फिल्म का गीत जो है वो मैंने प्ले कर दिया। तो नदीम मंसूर साहब शुक्रिया फ़ोन करने का, और जनाब आपने फरमाइश की, आपकी फरमाइश हमने पूरी की, शुक्रिया फरमाइश करने का, एक अच्छा गाना सुनने का मौका मिला। तो जनाब आप काम पे हैं और साथ में संडा रेडियो की निशरियात को भी सुन रहे हैं, तो अच्छा लगा सुन के। तो जनाब अब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है, तो कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराने गीत की बारी आती है और गीत वो प्ले करूंगा जो अमूमन मैं अपने प्रोग्राम में पेश करता रहता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे हमें छुट्टी होती है, तो आखिरी दिन है, तो गुलाम भाई को खुश करके चले जाएं। गुलाम भाई का फेवरेट गीत जो है वो प्ले करने जा रहे हैं जनाब, उनके नाम करेंगे। और तारिक जुल्फी साहब आप भी फ़ोन कर रहे हैं, शुक्रिया आप अपने दोस्तों के लिए, हीरा खान साहब के लिए और अमूमन आप मलक इसहाक साहब के लिए सुनते होते हैं, तो उनके नाम भी करेंगे। तो जनाब नदीम मंसूर साहब ये गीत आपके नाम भी करेंगे। और अभी जैसा कि मैंने कहा कि गुलाम भाई जो हैं उनका फेवरेट गीत है, तो उनकी जन से उनके पूरे स्टाफ के नाम और नवीद भाई आपके नाम और मलिक इम्तियाज साहब जनाब आपकी पूरी टीम के नाम भी करते हैं। यह बड़ा मस्ती भरा गीत है, यकीनन आप इसे पसंद करेंगे। और आपके साथ हैं इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अलादिता, उमेर, बाबर, इफराज, तो आप दोस्तों के नाम भी करते हैं और आपके साथ साथ सभी सुनने वालों के नाम करते हैं, सफियुल्ला भाई आपके नाम भी करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ियां 1:44 बता रही हैं, यानी कि 11:44। तो अब जनाब कमर्शियल की जानिब चलेंगे और कमर्शियल के बाद दोस्तों आप सुनेंगे वो प्यारा सा गीत जो गुलाम भाई का फेवरेट है। तो चलते हैं सुनते हैं दोस्तों कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chooza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, मस्ती भरा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब खबरें आने वाली हैं और अब क्या करूं, कुछ छोटा सा गाना ढूंढ रहा हूं, पहले ही ढूंढना चाहिए था और बातों में लगा रहा तो तो अब समझ नहीं आ रही कि कौन सा गाना छोटा सा होगा, तो देखते हैं कौन सा है। तो गाना नहीं होगा तो बातें करते रहेंगे आप दोस्तों के लिए, अच्छी अच्छी बातें आप दोस्त जो है जो मेरे साथ शेयर करते हैं। तो मैं अब जो है वो कोशिश कर रहा था कि कोई छोटा सा गीत मिल जाता तो आप के लिए और मेरे लिए भी अच्छा होता, लेकिन क्या है कि ढूंढ लूंगा लेकिन उस वक्त टू लेट हो जाऊंगा। चलिए ढूंढ लिया ये गाना, पूरा नहीं सुन पाएंगे, थोड़ा ही सुनेंगे, चलिए अच्छी बात है, सुन लें।

0: दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा और कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करने की कोशिश करें। और दोस्तों याद रखिए, लंदन में भी सनराइज रेडियो 2nd of September को मिड डे यानी कि 12 PM जब टाइम होगा 12 बजेगा, तो 2 सितंबर को जनाब अपने अक्रॉस वेस्ट लंदन जो है उसमें आप सनराइज रेडियो को सुन सकेंगे। तो चलते हैं जनाब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं एक प्यारी सी गज़ल के साथ। और खान भाई, शुक्रिया फ़ोन करने का। जनाब आपने कहा कि आपके साथ चौधरी दनियाल साहब हैं और आप उनके लिए एक कोई प्यारा सा गीत सुनना चाहते हैं, तो मैंने डिसाइड किया आज ये भूली बिसरी गज़ल जो है आप दोस्तों के नाम करूं और हिट ऑफ द आवर की शक्ल में। तो खान साहब आपके नाम और चौधरी दनियाल साहब के नाम, और उसके बाद अब्दुल कय्यूम साहब फ्राइजिंग हॉल से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आप तमाम सुनने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहते हैं, तो आपके दोस्तों के नाम भी करते हैं। गुलाम भाई और मलिक इम्तियाज साहब, आपकी पूरी टीम, इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह देता, उमेर, बाबर, इफराज, आपके नाम भी करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, माजे चाहते हैं क्या हो गया, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर पंकज उदास की आवाज़ में ये प्यारी सी गजल सभी सुनने वालों के नाम।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन गीत नहीं गजल, जनाब गुरदास मान के। यार क्या हो गया अमर तुम्हें, हाय पंकज उदास को गुरदास मान बोल रहे हो यार। कभी कभी हो जाता है जनाब, कभी कभी हो जाता है छोटे बड़े शहरों में। पहले छोटे छोटे शहरों में होता था, बड़े बड़े शहरों में भी होने लगा है। तो जनाब टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:14, यानी कि 14 मिनट्स पास्ट 12। और अब कमर्शियल की जानिब चलेंगे। कमर्शियल के बाद मेरी जानिब से आप तमाम दोस्तों के नाम गीत होगा। और ये गीत पिछले आवर में शुरू में मैंने इस गीत को क्यों किया था कि ये लगाऊंगा, फिर कुछ ना कुछ होता रहा, ये गीत वहीं पड़ा रहा। तो अब दूसरे आवर में आ गए हैं तो वो गीत भी कहने लगा, आमिर साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं आप, जो है ना वो मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, या तो मुझे यहाँ से निकाल दें, कैद करके रखा हुआ है, आप चला भी नहीं रहे हैं और मुझे बंद करके रखा हुआ है यहाँ, या तो मुझे आज़ाद कर दें। तो मैंने कहा नहीं यार, आज़ाद कर देता हूँ, आप हम सब का दिल खुश करो, हम आपको खुश कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। तो वो गीत सुनेंगे जनाब, तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद मिलते हैं।

0: कफ्सन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दस ब्रेडफोर्ड 7230303
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

मेरी याद जब बहुत आती है, क्या गीत था। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और दोस्तों चलते हैं अब अगले गीत की जानिब। ये बहुत ही प्यारा गीत है, आप सभी दोस्तों के नाम करूंगा, जहां कहीं भी आप सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं तो आपके नाम करते हैं जनाब। तो एंजॉय कीजिएगा इस गीत को।

जी दोस्तों, अभी आपने उदय नारायण को सुना और साथ में कविता कृष्णा मूर्ति जो है वो उनका साथ निभा रही थी। तो दोस्तों अब चलते हैं, ये गीत सुनते हैं और काफ़ी दोस्तों का ये गीत जो है पसंदीदा गीत है और इसकी अमूमन फरमाइश भी होती रहती थी। खासकर गुलाम भाई जो है उनका स्टाफ जो है ये गीत पसंद करता है, तो उनके नाम भी और इकरा जी आप सुनना चाहती हैं नजमा इफ़त नाजिया उमीदा रुबीना बुशरा ताज़ीम जायदा और साइमा के लिए, और आजरा बहन आपके नाम भी करते हैं। तो चलते हैं सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। गुलाम भाई, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अच्छा लगा आपने फोन किया। और अब बड़े दिनों के बाद गुलाम भाई मैं ये लता जी का गीत पेश करने जा रहा हूँ। बड़ा प्यारा गीत है, लेकिन अरसा हुआ ये गीत मैंने प्ले नहीं किया, तो आज सोचा कि प्ले कर दूँ। तो गुलाम भाई, आपके नाम, आपके पूरे स्टाफ के नाम, जिनमें मलका जी, जिया जी, आशा जी और रानी साहबा और साथ में निवेद भाई और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करूंगा, हीरा खान साहब के नाम करूंगा, खान भाई के नाम करूंगा, अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग वाले हैं उनके नाम करूंगा, वाजिद भाई एडर्सफील्ड से उनके नाम, तारिक जुल्फी साहब, तो हीरा खान और सफीउल्ला भाई और दीगर तमाम दोस्त जो उनके नाम भी करूंगा। और स्पेशली इस वक्त तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, जनाब बशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल और हाजरा बहन आपके नाम भी करेंगे, तो कमर्शियल सुनते हैं। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे जो गीत है लता जी की आवाज़ में, लेकिन उससे पहले, कमर्शियल पर जाने से पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 12:44, यानी कि 44 मिनट्स पास्ट 12। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद दोस्तों गीत होगा लता जी की सदाबहार आवाज़ में, और सदाबहार गीत है, सभी दोस्त इस गीत को पसंद करते हैं, यकीनन सभी पसंद करते हैं, बड़ी प्यारी शायरी है आप सभी दोस्तों के नाम। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

जी दोस्तों, अभी आपने लता जी की प्यारी सी आवाज में सदाबहार पुराना गीत सुना और दिनेश भाई फोन करने का शुक्रिया, आपके नाम किया ये गीत। माजरा चाहता हूँ, आपसे गप नहीं हो सकी, जल्दी में था, आपसे बात नहीं हो पाई अच्छी तरह। एनीवे दिनेश भाई, आप भी ठीक होंगे, मेरी भाभी भी ठीक होगी, उनके नाम भी जो आने वाला गीत है आपके नाम भी करते हैं। और चौधरी मुजफ्फर साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब, आपके नाम भी करते हैं। और आबिद भाई, आपने भी फ़ोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके नाम भी करते हैं जनाब। और उसके बाद ग़ुलाम भाई, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका, आपके नाम भी करते हैं। और दीकर तमाम दोस्तों के नाम करते हैं जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो एंजॉय कीजिएगा इस गीत को।

जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और उदय नारायण की आवाजों में प्यारा सा गीत सुना। और दोस्तों, इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि खबरों का टाइम हो गया है, तो चलेंगे सुनेंगे खबरें और मिलेंगे खबरों के उस पार। सुनते रहिएगा।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और ये थोड़ी सी आवाज़ जो सुनी ना, ये आप अगले हफ्ते इंशाल्लाह सुनेंगे, आने सुनेंगे। तो जनाब आप प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आ गए हैं। उम्मीद रखते हैं कि जनाब प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों को पसंद आए होंगे और कोशिश होगी ये प्रोग्राम का आखिरी जो आवर है इसमें भी अच्छे और प्यारे से गीत आप दोस्तों के लिए पेश किए जाएं। और प्रोग्राम के जनाब तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करेंगे हिट ऑफ द आवर के साथ, एक पंजाबी गीत के साथ। तो गुरदास मान और साथियों की आवाज़ों में आप दोस्तों के लिए ये प्यारा सा गीत इंजॉय कीजिएगा इसको। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल क्या हुआ, कमर्शियल नहीं है जनाब, हिट ऑफ द आवर सुनते हैं।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में। तो आप दोस्तों को अगला गीत पेश करने से पहले, कमर्शियल पे जाने से पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 1:13, यानी कि 13:01। तो जीत कौर बहना, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आप जाहिर है, आप जीत कौर बहना, आपके लिए पंजाबी का गीत ही मैं लगाऊंगा। तो आप कमर्शियल का टाइम हो गया, कमर्शियल के बाद जीत कौर बहना आपके लिए गीत होगा, और वो भी गुरदास मान और अलका यग्निक की आवाज़ों में। और वाजिद भाई हडर्सफील्ड से आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया, आपके नाम भी करेंगे। उसके बाद लियाकत भाई, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका, आपके नाम भी करेंगे। और चौधरी मुजफ्फर साहब, आपके नाम भी करेंगे। और ये फेवरेट है जनाब इकरा जी आपका और आपकी पूरी टीम का, जिनमें नजमा, इफ़त, नाजिया, हुमैरा, रुबीना, बुशरा, ताजीम, जायदा, साइमा, आपके नाम भी और दीगर तमाम दोस्तों के नाम, और स्पेशली तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी, और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी। तो चलेंगे। और याद रखिए कि जनाब संडा रेडियो जो है ये बहुत जल्द, यानी कि 2nd of September मिड डे, यानी कि 12 बजे आप सुन सकेंगे लंदन जनाब, आप इसको क्रॉस वेस्ट लंदन में आप सुन सकेंगे। तो अपने अजीज रिश्तेदार जो वहाँ रहते हैं उन्हें बताइएगा कि संडा रेडियो आप ब्रेडफोर्ड का आप वहाँ भी सुन पाएंगे। तो जनाब, जैसा कि मैं कह रहा था, कमर्शियल बाद गीत होगा, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। कमर्शियल सुनिएगा, फिर गीत, उसके बाद मिलते हैं।

0: नफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफोर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
3: बुकिंग्स और मज़ीद मालूमात के लिए कॉल करें 0127473732। जिनार रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

जी दोस्तों, अभी आपने गुरदास मान और अलका याग्निक की आवाज़ों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। और तनवीर अख्तर साहबा, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया। आप कह रही हैं कि आपको ये गाना अच्छा लगा, आपके नाम किया। और उसके बाद अब जो गीत आने वाला है, ये भी बहुत ही प्यारा सा गीत है मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम।

मैं बेवफा नहीं हूं, क्या गीत था साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में। और ये गीत सुनकर लियाकत भाई आपने फोन किया, आपको ये गाना बहुत अच्छा लगा, तो जनाब आपके नाम तो किया था मैंने ये, तो फिर दोबारा आपके नाम कर देता हूं। तो एनीवे लियाकत भाई फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप के नाम गीत करेंगे कमर्शियल के बाद, और गुलाम भाई आपके स्टाफ के नाम और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। वैसे तो काफ़ी बारिश हो रही है, तो उस लिहाज से भी मैं सोच रहा था कोई मस्ती भरा गीत लगा दूँ बरसात के कोई मिलता जुलता गीत। तो दो गाने जहन में, अब देखता हूँ कौन सा गाना मैं लगाऊंगा। अगर बारिश पे जाऊँ तो बारिश का कोई गाना लगाऊंगा, और मूड बन गया तो कोई और लगा दूंगा। तो चलते हैं, एनीवे मस्ती भरा गीत मैंने कोई प्ले करना है जनाब, तो वो ज़रूर आपके लिए होगा। तो अब चलेंगे कमर्शियल की जानिब, कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे जनाब एक मस्ती भरा गीत, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज़ रेडियो के संग।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही मस्ती भरा गीत सुना और शफीक भाई गालवन, आपने पहली बार हमारे प्रोग्राम में शमूलियत की। आप ड्राइव कर रहे हैं और बरसात बार हो रही है और आपने कहा कि आपने गाना अच्छा लगा दिया, बरसात का जो लुत्फ है दुबाला हो गया है। तो जनाब अच्छी बात है, शफीक भाई आपको ये गाना अच्छा लगा, पहली बार आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, जी आए नु सत बिस्मिल्ला, तो बहुत अच्छा लगा और उम्मीद रखता हूँ आइंदा भी आप हमारे प्रोग्राम में शमूलियत किया करेंगे। उसके बाद ओज़ैर भाई, आप भी पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, शुक्रिया आपका भी, आपने जो इतला हमें दी हम उसकी इंक्वायरी करेंगे। तो एनीवे बहुत शुक्रिया और उम्मीद रखता हूँ आप आइंदा भी हमारे प्रोग्राम में शमूलियत करेंगे और आपके नाम भी कुछ करेंगे। लेकिन अब क्या है कि वक्त हमें बता रहा है कोई गीत नहीं होगा। और लियाकत भाई माजे चाहते हैं, आपसे भी बात हुई, अच्छा लगा आपसे भी बात करके। तो अब जनाब वक्त, जैसा कि मैंने कहा कि खबरों का भी नहीं है, कमर्शियल का भी नहीं है, गानों का भी नहीं है, तो वक्त है, आप समझ गए होंगे, बिल्कुल जोहर की अजान का। तो इसलिए जनाब जोहर की अजान सुनेंगे, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं जोहर की अजान, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
1: My favorite radio station, Sunrise Radio.
2: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों साथियों, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियों के मुताबिक टाइम हुआ है 1:45, यानी कि 1:45 past 1। तो चलेंगे जनाब अब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक सदाबहार पुराना गीत सुनेंगे, वो भी जनाब बरसात के रिलेटेड होगा। सदाबहार पुराना गीत और वो होगा जनाब शफीक भाई, उज़ैर भाई, लियाकत भाई, तनवीर अख्तर साहबा और जनाब जीत कौर बहना और आबिद भाई। आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपके नाम भी करेंगे। और दिनेश भाई और ग़ुलाम भाई खान साहब, अब्दुल क़यूम साहब, फ्राइजिंग हॉल वाले तारिक ज़ुल्फ़ी साहब, नदीम मंसूर साहब, हीरा खान साहब और दीगर तमाम दोस्तों के नाम गीत करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद एक छोटा सा गीत, सदाबहार पुराना गीत आप दोस्तों के नाम, उसके बाद मिलते हैं।

0: ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.
3: 24 hours a day, Sunrise Radio. It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

दोस्तों अभी आपने लता जी की प्यारी सुरीली आवाज में प्यारा सा गीत सुना और क्योंकि बड़े दिनों के बाद ये दिन को बरसात हुई है ब्रेडफोर्ड में, तो इसलिए हम जो है बरसात के गाने लगा रहे हैं। तो जनाब अब चलते हैं आपको बरसात का एक और दिन गीत जो है वो आपको सभी दोस्तों के नाम करूंगा, तो एंजॉय कीजिएगा इस गीत को भी।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। और दोस्तों, मुझे आमिर शराद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी संडे को सुबह 11 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगमान एंड गुड बाय।

0: कफन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
3: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735. 043.
3: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
4: Hold on, miss. 2055? We'll be grown ups by then.
5: We're not having that, are we?
4: No. Oi, hear that? It's water and cans.
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
8: Because when we work together,
9: it all adds up.
10: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
11: You are listening to Sunrise Radio, the greatest Asian radio station in the world. Sunrise Radio. Enjoy!
12: Sunrise Radio. Sunrise Radio.
13: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: कफ्सन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਓਹੋ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ। ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
3: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੱਢੀ ਮਾਰੀ। ਨੱਕਾ ਨਤੀਲਾ ਸਿਰਫ 2 ਪੌਂਡਾਂ

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
3: My favorite radio station, Sunrise Radio.
4: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

अपने तो अपने ही होते हैं। जी हाँ, सही बात बोली उसने। सोनू निगम, जेश गांधी ऑन द वोकल्स फ्रॉम द मूवी अपने 2007 मूवी। रिमेंबर इफ यू लाइक द सॉन्ग गिव इट अ थम्स अप वाया द सनराइज ऐप एंड डू लीव अस योर फीडबैक हियर एट सनराइज रेडियो। यू नो लाइक आई से, आई वाज गोइंग थ्रू द प्लेलिस्ट एंड आई केम अक्रॉस दैट सॉन्ग एंड आई थॉट आई हैव टू प्ले दैट वन। होप यू एंजॉयड इट। लिसनर्स, हैप्पी थर्सडे गोइंग आउट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। होप यू आर एंजॉयिंग योर थर्सडे इवनिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। दिस इज द ड्राइव टाइम शो एंड माय नेम इज पाउल। सो आई एम ओनली हियर टिल 8 o'clock, सो आई हैव गॉट अबाउट 21 minutes left of the show left to go, and I've got some more fantastic tracks for you as well. Now the next track which I have ready, I'm going to dedicate to Vicky, first time caller on my show. Lovely to hear from you, Vicky. Thank you for your kind words as well. So you wanted me to dedicate the next track, whichever one it was going to be for you, but this track that I've got, it's a clue to today's riddle. Jiha, so listen to this track and then I'll share that riddle with you straight after this track.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: कुल्लो नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कब्र को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, ब्रेडफोर्ड 7230300।
2: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831165. Raman 078-341-77866. Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: कफ्सन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: ਜੁਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਓਹੋ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ। ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ? ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕਲੈਂਡ, ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੱਢੀ ਮਾਰੀ। ਨਕਲ ਨਤੀਲਾ ਸਿਰਫ 2 ਪੌਂਡਾਂ ਨਾਲ।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Have you tried Caratino Better Ghee? The healthier, low-cost butter ghee alternative, Caratino Better Ghee, is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.